0: हाँ जी मैम, और भाई
1: कौन?
0: बेकर क्वीन रॉबर्ट 693
1: Returning clear, expired 10/24/25 on an 05 Subaru, release out of Stockton.